0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া ছয় বজাত হিন্দীত আৰু ছয় বাজি পাঁচ মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
7: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर IPL 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन

0: हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इंडियन नेवी फोर्स पाकिस्तान नेवी टू रिमेन कन्फाइंड टू इट्स पोर्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिन आउंग ग्लैंग अराइव्स इन न्यू दिल्ली ऑन अ 5-डे विजिट टू इंडिया, ऑफर्स प्रेयर्स एट महाबोधि टेम्पल इन गया। Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
4: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
3: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
5: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
3: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर

0: और 4x100 meter का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ. एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर. एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ. मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया. एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ. मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ. एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था. एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले. तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर. एंड मैं पार्टिसिपेट किया. एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है. मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ. एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली.
1: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ. अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ. मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे. तो हमारे इंडिया का कल्चर है, जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं. तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था. तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था. तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था भी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है. तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया. तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है. वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ. तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे. तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा. मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा. तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो. तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है. तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है.
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो.
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर. फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी. उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा. तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे. मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा. तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे. तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं. और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है. तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है. तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर.
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना. और जैसा गुरिंदरवीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया. तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो. जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते. तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा. तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता.
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं. तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही. मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि

0: तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में को कम

आम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार
संदेश मिल रहे हैं, लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के महार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी
और एस्ट्रो

फिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में
पानी की समस्या

0: बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ইমান পৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটী। এতিয়া আগবঢ়াইছো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ। এই ভাষান্তৰ অসমৰ আকাশবাণীৰ কেন্দ্ৰসমূহে ৰিলে কৰি শুনাইছে।
3: মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ। মন কী বাতত পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ সৈতে জড়িত হবলৈ পাই মই সুখী হৈছো। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত আমাৰ দেশবাসীয়ে দেশহিতকৰ সমাজৰ হিতৰ এনে কিছু অদ্ভুত কাম কৰি আছে

0: इत्यस्य रक्षणाय प्रयतमानाः।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्रपट्टियां भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पट्टियां चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को विभिन्न स्पर्धाओं में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान क्लब पूरे देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का भी उल्लेख किया। इस विद्यालय ने पिछले साल अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी की। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और

0: सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में इस विद्यालय नेटवर्क की भूमिका सराहनीय है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान ले रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, शेष 5 मरीजों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की आशंका है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका व्यक्त की गई है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फयान से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve such priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharshi Bal Arjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi assures the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: The Prime Minister suggested that people drink different summer drinks such as Aam Panna, buttermilk, lassi, sattu sharbat, bel panna, panakam, neer mor, sambaram, kokum sharbat, which are traditionally made in different parts of the country to beat the heat. In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin, Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking 4 national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Vala Sheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. In his address, Prime Minister Modi mentioned the inspiring story of Akash Gupta of Basti in Uttar Pradesh, who made a new beginning with his friends to clean the Manorama River of his village. Mr. Modi also shared a story of Balakrishna Aya, a retired teacher from Goa, who began working towards a solution to the water problem in the Maddi Tolap area. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interests and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General N.S. Raja Subramani today said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani emphasised that greater collaboration among the armed forces, industry, academia, startups and the research ecosystem would be a key enabler of modernisation. U.S. President Donald Trump has said the United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, but warned that military action remains an option if negotiations fail. In an interview with Fox News at the White House, Trump said his administration's priority is ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. And in IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the 2026 season at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fazar Alfian in the final of the Singapore Open today. And that is the end of this news bulletin.

सैनिक भाइयों, आज के प्रसारण में मैं सुनंदा तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए आज का प्रसारण शुरू करने से पहले मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज रविवार है। आज का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत, 2:00 मिडडे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर गीत अपना धुन पर आए और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए शुरू करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है वीर जारा।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पद्मावत फिल्म से गीत नीति मोहन की आवाज में। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल सोमवार है। कल का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर कार्यक्रम गीत माला, 1:40 पर कार्यक्रम वतन के तराने, 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम चयनिका। इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वीर जरा।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। आइए शुरू करते हैं अगला कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है बाजीगर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें

0: हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। दीजिए समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एन

0: राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है सीता और गीता।
1: अरे अरे ए ए

0: loud. Go wild.
1: अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो टॉक।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, न जाने कितने ही फॉर्म्स में आजकल लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना जानलेवा है। जानबूझकर कुएं में गिरने में कितनी समझदारी है, जानेंगे हम आज के रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद रश्मि जी। और आई थिंक मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू सेवन का बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ें, एक छोटी सी बात यही कि तंबाकू सेवन से किस तरह से हमारी ओरल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं।
2: जी रश्मि जी, एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम्स या जो मौखिक बीमारियां जो तंबाकू सेवन से होती हैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन जो है वो एक एडिक्शन है जिसको, और ये क्लासिफाइड बीमारी है, मतलब एक डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है जो क्लासिफाइड है। और इसके सेवन से भी नुकसान होता है, जब आदमी इसको सेवन करके एडिक्टेड होता है तब छोड़ने पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होती है। तो जरूरी ये है पहली बात ये जानना कि तंबाकू सेवन जो लोग सोचते हैं, चाहे वो धूम्रपान के रूप में किसी भी फॉर्म में हो या फिर जो निर्धूम या फिर जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके जैसे मसाला गुटखा, खैनी, पान और अलग अलग मसाले आते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सब तंबाकू के अंडर ही आते हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी तरह का सेवन, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेंट है अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे ना शुरुआती लक्षण जो होती है वो, खास करके आपके दांत नॉर्मली सफेद होते हैं, शुरुआत में क्या होता है सफेद दांत जो है वो धीरे धीरे करके उनका रंग जो है बदलना शुरू होता है। उसके बाद धीरे एक बार दांतों का रंग जो है नॉर्मली जैसे क्रीमी व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है, तो वो रंग जो है वो धीरे धीरे रंग बदलता है पीले से और फिर आगे जाके काला या फिर भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला जो है फिर वो मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, और मसूड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के चारों तरफ जो बाहर दिखने वाला जो क्राउन पोर्शन, जो सतह हमें दिखती है अपने दांतों में, तो उस चीज को पकड़ के रखता है और उसको मसूड़े वहां पर जो है सपोर्ट करते हैं, और वो जो है फिर वो इस जो उसके जैसे हम लोग सिगरेट लेते हैं, सिगरेट के धुएं से जो गर्मी पैदा होती है या फिर तंबाकू का सेवन जो गुटखा खैनी के रूप में लेते हैं उससे जो जो जो रस निकलता है वो सब इरिटेट करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमारे मसूड़ों, और उससे होती है मसूड़ों की बीमारियां। तो ये हैं सब शुरुआती जो बीमारियां जो जो मुख में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप तंबाकू के जकड़ में आ जाते हैं पूरी तरह से और कंटिन्यूसली इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इनिशियल जो शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं, लोग उनको याद ही नहीं होता कि कितने पिए उन्होंने, सिगरेट कितने पिए, बीड़ी कितने मारे या फिर खैनी और गुटखा कितनी बार खाया, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा चलता ही रहता है और उसका जो रस निकलता है वो अपने आप में हानिकारक होता है। तो तंबाकू में जैसे मैंने आपको बताया पहले दांतों का रंग बदलना, उसके बाद मसूड़ों की बीमारियां होना, और धीरे धीरे जब मसूड़े फूल के उसमें से खून निकलना आए तरीके, मतलब आप जस्ट ब्रश करिए उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा होता है कि उसके बाद मसूड़ों की जकड़ जो है ना वो कम हो जाती है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे मैं इनके बारे में और भी जानकारी देना चाहूंगा आपको।

0: आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। जी हाँ, आज का रेडियो डॉक्टर का विषय यही है, तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके जान ले, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शुरुआत में ही जो लोग इसे खाना शुरू करते हैं उनके दांतों का रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये तंबाकू उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है?
1: जी, बहुत बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज क्या है कि ये एक, जैसे मैंने आप शुरुआती लक्षण बताया, इसके आगे कैसे होता है कि तो दांतों के जो हड्डी के अंदर जो होती है, हड्डी का गलना भी शुरू होता है। और उससे पहले जो तंबाकू का सेवन जो करते हैं, जो लोग सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें ये दांत के जो हड्डी कमजोर होने से दांत समय से पहले गिर भी सकता है। मतलब उसको वी कैन टूथ लॉस जिसको बोलते हैं, या दांतों का समय से पहले गिर जाना भी संभव है तंबाकू जो सेवन करते हैं।
0: सॉरी सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं, हम उन्हें लाइन पर ले लेते हैं।
1: sure.
0: जी, कौन बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
2: मेरा नाम नीरज चौरसिया है जी। और मैं ब्लाइंड हूँ, संत नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: मेरे दांतों में नीचे ऊपर दोनों साइड दर्द होता है, अजीब सा दर्द होता है, जैसे लगता है मैजिकली थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन बाद फिर चालू हो जाता है।
1: जी नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको दांतों में दर्द है और आपको कभी रात को दर्द होता है, कभी कभी दर्द होता है और कुछ दिन तक रहता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको जो निकटतम आपके जो डेंटल प्रोफेशनल, जो दंत चिकित्सक है, आपको उनके पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका कारण क्या है। अगर उसमें दांतों में सड़न हो गई है तो जी,
2: थोड़े दिनों बाद मैं दिखा गया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दर्द की दवा लिख दी थी और पेस्ट लिख दिया था। मैंने किया, फिर से मेरे दांतों में दर्द चालू हो गया। रोटियां अपने आप खिंचाव से दांतों के बीच में फंस जाती हैं।
1: ठीक है नीरज जी, देखिए दो तीन तरह का से प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जैसे मसूड़ों की बीमारी, दांतों के बीच में जगह बन जाने की वजह से खाना फंसना, और उस तरह ये एक रूटीन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखता है। तो सफाई, उसको क्लीन, मतलब डेंटिस्ट के द्वारा उसकी सफाई करवाना, और उसके बाद बराबर से आपको ब्रशिंग कैसे करना है वो तरीका आप सीख के जाइए, ताकि आप समय सही तरीके से ब्रश करके उन जगहों को साफ रख सके जहां पर खाने फंसने की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा जो दर्द का है, दोबारा आप जाइए एक बार डेंटल डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी निकटतम है, या फिर हमारे अस्पताल में आके दिखाइए और वहां पर इसका सही से इलाज करवाइए।
0: जी, तो मुझे लगता है नीरज जी को बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि जो लक्षण आप बता रहे थे कि दांत गिरने भी लगते हैं या जो दांत की हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। चलिए, इससे हमें मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, तो सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो
3: जी,
0: कौन बोल रहे हैं आप? सर, आपका नाम बताइए।
3: मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूं।
0: जी बताइए। जी,
3: मेरा ये कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले सतोरा साथ में रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, सुपारी, सूखी सुपारी
0: जी,
3: उसमें चूना और तंबाकू डाल के वो लोग खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे चूना भी जाता है हमारे को, तंबाकू भी जाता है, और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। तो क्या दांतों को कैल्शियम की एक तो बहुत जरूरत होती है, इससे नुकसान होता है, फायदा होता है? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बीड़ी है, बच्चा बीड़ी पीता है, बड़े लोग बीड़ी पीते हैं, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, बड़ा आदमी कहता है सिगरेट पीता है, वो बहुत महंगे सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, कहता है उससे तो कभी नुकसान होता ही नहीं।
0: जी,
3: तो क्या ये बस सच है या गलत है?
1: जी,
3: ये दो बातें मेरी हैं।
1: जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। दोनों सवालों का जवाब मैं तो जल्दी दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कैल्शियम के सोर्सेज, मतलब और भी तरीके हैं कैल्शियम अपने शरीर में लेने के लिए, दूध और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आप, पनीर है, बाकी सब बहुत सारे प्रोटीन और फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम भी हैं, सब कुछ आप मिला के एक, अगर आदमी वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से कैल्शियम का सपोर्ट ले सकता है, और जो नॉन वेजिटेरियन वो अलग तरीके से ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो तंबाकू का सेवन छूना और इसके साथ खाते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शायद आज उनको पता नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे करके, दांत सख्त नहीं होंगे, मसूड़े बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, अभी उनको वो एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके जो जो जो उसका जो प्रकोप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, बीड़ी जो है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, आप कुछ भी बोल लीजिए, सारे के सारे सेहत के लिए आज नहीं तो कल हानिकारक हैं। वो आपको आज शायद दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में इन सभी व्यक्तियों जो इनका सेवन करते हैं उनमें इसके लक्षण और साथ साथ उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लक्षण भी बताए और लेकिन साथ साथ ओरल प्रॉब्लम्स मतलब या तंबाकू खाने से और क्या क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो सकती
1: हैं? जी, मैं बहुत जल्द बताता हूं, जल्दी देखिए, एक जैसे मैंने अभी तक बता चुका हूं जो लक्षण हो चुके हैं, उसके अलावा जैसे मुंह में छाले पड़ना, तो वन ऑफ द रीजन, एक कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ऐसा छाले जो तंबाकू के सेवन से पड़ते हैं, खास करके उन जगहों पे जहां पर तंबाकू किसी तरह से रखा जाता है, चाहे गुटखा खैनी रखते हैं, उससे भी ये छाले पड़ सकते हैं। और ये छाले ऐसे होते हैं कि वो भरते नहीं है, जल्दी भरते नहीं है, और इनका जो इसकी वजह से जलन होती है, खाने में दिक्कत होती है, और साथ में नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो आपके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं। जब वो सख्त होना शुरू होते हैं तो नॉर्मली हमारी मुंह जो है वो 3 उंगलियों के बराबर खुलता है, धीरे धीरे करके जब वो सख्त, उसके जो मांसपेशियां सख्त होना शुरू होती हैं, उसकी वजह से मुंह का खुलना भी कम हो जाता है और दिक्कत होती है बोलने में, यहां तक कि खोल के ठीक पानी मुंह साफ करने में या कुल्ला करने में भी दिक्कत होना शुरू होती है। और इसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो खास करके मसूड़ों के मांसपेशियों के सख्त होने की वजह से होता है। उसके अलावा सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी पड़ते हैं, जहां पर हम लोग, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर से पहले के होने वाले लक्षण हैं। और अगर हमें ध्यान नहीं दिया गया, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर खुद आईने के शीशे के सामने भी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई इस तरह का धब्बा जो हट नहीं रहा हो और काफी 3 हफ्ते से ज्यादा आपके मुंह में हो गया हो, तो आपको तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और अगर इसको छोड़ दिया और ऐसे ही तंबाकू का सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मौखिक कैंसर या मुख कैंसर, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तंबाकू सेवन करने वालों में।
0: सर, मुंह का कैंसर में मतलब केवल एक कहाँ का एग्जैक्टली हम बोलें कि गले में हो जाता है, गाल में हो जाता है, या इसको मतलब कंप्लीट ये सारे ये जो अंग हैं हमारे शरीर के वो सब इससे प्रभावित होते हैं?
1: ज्यादातर तो सभी प्रभावित होते हैं एक तरीके से, लेकिन खास करके उन जगहों पे जहां पर हम गुटखा खैनी बीड़ी की वजह से तो अलग अलग जगहों पे हो सकता है, जैसे गले में भी हो सकता है, लेकिन गुटखा खैनी की वजह से खास करके इस तरह के जो मसाले वाले जो तंबाकू पदार्थ हैं वो उन्हीं जगहों पे होता है जहां पर इसको रखा जाता है खास करके।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
4: हाँ जी, हेलो।
0: हेलो जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए।
4: जी, मेरा नाम दिवाकर है, और डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि दांतों में कई प्रकार की तकलीफें हो जाती हैं, हर उम्र में हो रही हैं
1: जी।
4: तो बेसिकली सवाल मेरा ये था सर कि जैसे हम लोग केयर करना चाहते हैं दांतों की, मतलब ऐसे कोई बीमारी जैसी चीजें ना आ सके,
1: जी,
4: तो अब मतलब एक डॉक्टरी, एक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हम किस तरह से

0: रोज ब्रश तो कर ही रहे सर, लेकिन कुछ आप थोड़ा हमें वो बताएं, जैसे केयर कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए जरूरी।
1: जी जी दिवाकर जी, सर थोड़ा सा जी जरूर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया, तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ब्रशिंग जो करते हैं सही, मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्रश दिन में दो बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और उतना ही नहीं, हर बार जब आप ब्रश करें 2 से 3 मिनट सही तरीके से। कई बार ब्रशिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं, कई बार मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है ध्यान रखें कि रेशे जो है ब्रश के मुलायम हो और आप नरम हाथों से, अपने हाथों से बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए सही तरीके से ब्रश करें। इसकी सही विधि और प्रणाली होती है जिसको आप अपने दंत चिकित्सक से आप सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दिन में दो बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। और ब्रश जो है, टूथब्रश जो है, हर 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना जरूरी है। और अगर आप समय से पहले आपका टूथब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो खुल्ला जरूर करें और अपने उंगली से, साफ उंगली से आप अपने मसूड़ों को भी थोड़ा मालिश करें। तो और उसके लास्ट एक और सजेशन ये है, आपका उपाय यह है कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेंटल जो दंत चिकित्सक है उनसे जांच, आपके जस्ट एक चेकअप कराना, रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके नुस्खे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं। एक लिख रहे हैं जिला लातेहार झारखंड से कॉलेश्वर ठाकुर, कहते हैं तंबाकू पान मसाला जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों को खाना खाते समय सब्जी ज्यादा तीखा लगना या भूख कम लगना या हाथ से 4 उंगली मुंह में नहीं जाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ये पान तंबाकू खाने से ही हो रहा है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही तरीके के सारे लक्षण जो है, मेरा काम जो है आसान कर दिया है, सारे सही लक्षण बताए हैं। जो भी तंबाकू का सेवन करता है उनको करारा या फिर तीखा खाना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उनके जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो पतली हो जाती है, इसलिए मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं। इन लोगों को ज्यादातर पड़ते हैं, उसकी वजह से मुंह में जलन, खाना ना खा पाना, तीखा ना खा पाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
2: एक और मैसेज आया है, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं, मेरे टूथ में, मेरे दांत में सेंसिटिव है।
1: देखिए सुशील जी, ऐसा है कि कई बार ठंडा गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं।
2: पान खाते हैं
1: तो फिर आपको जानना जरूरी है कि पान में खुरदरे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले दांत जो है ना घिसना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से ठंडा गर्म लगता है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम हटा दें तो ये तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो इसी तरह से दवाइयों का लेते रहेंगे साथ और फिर बाद में करना, उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए
2: आप सुन रहे हैं रेडियो 102.6 पर और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से, मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। सवाल और भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक और लिसनर हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नाम मेरा अरुणेश कुमार मिश्रा है मैम।
1: जी,
2: ये बीच में ना मेरे छाले पड़ जाते हैं मसूड़ों में और वो अपने आप फूट जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मतलब क्या कोई टूथपेस्ट वगैरह चेंज करें या फिर कैसे करें?
3: हाँ अरुणेश जी, देखिए अब जो आप कह रहे हैं वो एक बार सही से एक बार जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह में ऐसे छाले आना या फिर सूजन हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानना जरूरी है, बिकॉज इलाज जो है उसी कारण के हिसाब से ही उसका इलाज होता है। अगर दांत से जुड़ा हुआ तकलीफ है तो फिर हम दांतों का इलाज करेंगे, अगर मसूड़ों में तकलीफ है तो फिर मसूड़ों का अलग से इलाज होगा। अगर ये सूजन और जो ये बन रहा है ये बार बार तंबाकू के खाने के सेवन की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग होगा। तो पहले तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज जो है कारण के हिसाब से ही हम इलाज करते हैं। तो अगर एक ट्रेंड सर्टिफाइड दंत चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जरूर पहले जांच करेंगे और जांच के साथ साथ सही कारण क्या है उसका कारण के हिसाब से फिर आगे का इलाज करेंगे।
1: जी बिल्कुल सर। उमेश कुमार जी पूछ रहे हैं ख्याला से, कहते हैं टीथ में मेरे पेन हो यदि तो उसे निकलवाना चाहिए या फिर नहीं, या दवा से भी वो ठीक हो सकता है?
3: उमेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगेन वापस मैं उसी मुद्दे पे आता हूं कि ऐसी कोई भी चीज मैं रेडियो टॉक शो पे नहीं कहूंगा जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो निकटतम आपके दंत चिकित्सक हैं उनके पास दिखाएं पहले, बिकॉज मैं यहां से ये नहीं कह दूं कि दांत निकालना है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दांत निकालना अगर जरूरी है तो निकालना पड़ सकता है, वरना नेचुरल टीथ जो है आपके जो शरीर का जो अंग है वो उसको जितने दिन तक आप बचा के रखेंगे वो आपके काम ही आएगा, चाहे उसका इलाज करवा के, नसों का इलाज करवा के हो ताकि दर्द दूर हो जाए, और उसके बाद वो दांत वैसे ही रहेगा, लेकिन वो सारे आपके जो काम जो है जैसे चबाने का हो, मुस्कुराने का हो, और ये सब चीजों के लिए वो आपको मदद करेगा।
1: जी, तो जितना ज्यादा आप अपने दांतों को या अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहें वो आपके ऊपर है। यदि आप दांतों की या मुंह की सफाई सही तरीके से करते हैं तो आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं ओरल समस्याओं पर और वो भी तंबाकू खाने की वजह से। तो जैसे कि आपने हमें बताया, लक्षण बहुत सारे बताए आपने, लेकिन इसके अलावा क्या क्या बीमारियां इससे होती है वो भी हम जानना चाहेंगे।
3: जी, ये बहुत जरूरी जानना, बिकॉज तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से आप मान लीजिए कि आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक ऐसा कोई अंग नहीं होगा
1: जो प्रभावित
3: नहीं होगा। जब अगर हम कैंसर की बात करें, शरीर में 10 से ज्यादा किस्मों की कैंसर जो है शरीर में होती है, चाहे वो मुंह का कैंसर तो हमने बात कर ही लिया, चाहे गले का कैंसर आप कहिए, फेफड़ों का कैंसर कहिए, स्टमक कहिए, पैनक्रियास कहिए, आप बस गिनते जाइए, कैंसर की गिनती जो है तंबाकू के सेवन से मतलब ऐसा कोई अंग नहीं जो बच जाएगा, नंबर वन। तो कैंसर तो एक बहुत मतलब इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसके अलावा फेफड़ों की बीमारी होना, मस्तिष्क में स्ट्रोक होना, दिल की बीमारियां, बिकॉज सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो होना, फिर किडनी में भी प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह से मतलब शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं तंबाकू का असर पड़ता है, यहां तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है तंबाकू के सेवन से।
1: जी, तो देखिए आपने तंबाकू, कहते हैं कि तंबाकू बड़ा अच्छा होता है मतलब खाने के लिए, शुरुआत जब करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन पहले ये शुरुआत होती है, एक आदत बनती है, फिर जरूरत बन जाती है और उसके बाद आपको लत लग जाती है और आप इसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट किस तरह से इस आदत से निजात दिला सकता है किसी भी पेशेंट को?
3: जी देखिए, सबसे पहले
1: मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेंटिस्ट भी किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं।
3: जी जी, बहुत जरूरी है कि ये जानना कि देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जनरल आपकी मदद कर सकते हैं और खास करके एक दंत चिकित्सक जो है वो जो है सबसे पहली बात ये है, दंत चिकित्सक जो है छोटे बच्चों से लेके वृद्ध अवस्था तक सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सभी को वो केटर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दंत चिकित्सक को बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप मिलते रहते हैं, तो सबसे पहली बात दंत चिकित्सक अपने आप ट्रेंड होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में जानकारी होती है, और खास करके जब वो चेकअप करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं उनको जरूर बताएं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसी की वजह से आप उनके पास आए, नंबर वन. नंबर टू, एक दंत चिकित्सक आपकी पूरी सब कुछ समझने के बाद वो आपको एक हेल्प कर सकता है. काउंसलिंग और एक डॉक्टर दोनों का मिश्रण है दंत चिकित्सक. वो काउंसिल भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं
1: जी.
3: तो उससे डेंटिस्ट जो है ना, दंत चिकित्सक जो है, बहुत कुछ आपको मदद कर सकते हैं जब तंबाकू छुड़ाने की बात आई तो
1: जी. डॉक्टर साहब, इसी बात पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें लेते हैं हम लाइन पर. हेलो.
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
3: नमस्कार.
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से.
3: जी जी बताइए.
2: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस को बहुत एडवांस हो गई है, तो ऐसे में अगर कोई होम रेमेडीज है जिससे हमारी ओरल केयर होती रहे और हमारे जो दांत और दाढ़ है वो भी सेफ रहे, कृपया बताने का कष्ट करें.
3: जी जी जी चड्ढा जी, देखिए एडवांसमेंट तो बहुत हुई है लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आज तक हम वही हैं और उसी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात ये है कि ब्रशिंग करने, जब आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रश आती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें और टूथब्रश से ही आप उतना जितना मिनिमम चाहिए आप उतना करिए, क्योंकि इतने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. नंबर वन, दो टाइप के टूथब्रश हैं और पेस्ट भी बच्चों के लिए अलग किस्म के आते हैं और बड़ों के लिए अलग किस्म के आते हैं. ये भी ध्यान रखिए, पेस्ट बहुत जरूरी है, किसी भी व्हाइट कलर का पेस्ट जो भी होता है, प्रेफरेबली जेल ना हो लेकिन आप जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है. और तीसरा ये है, जो आप जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, इन तीन चीजों से ही आप एक मिनिमम, मतलब एक बहुत स्वस्थ मौखिक स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं. साथ में अगर आप इसमें जोड़ दें रेगुलर डेंटल चेकअप, तो इन चार चीजों से, और आप जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट होता है या फिर आप कहिए जो पौष्टिक आहार होता है, इन चार पांच चीजों को लेके आप अपने मौखिक स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप बरकरार रख सकते हैं
1: जी. डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, ये लिख रहे हैं केडी त्रिपाठी रांची से, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 74 वर्ष. कहते हैं दो दांतों के बीच में जगह हो गई है और वहां पर खाना फंसता है, रबर जैसा मटेरियल से इसको भरा गया था लेकिन ये निकल जाता है, क्या करना चाहिए?
3: जी त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे पहले एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कितना जगह बना हुआ है. उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आती हैं, तो हमारे दांतों के भी चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं. और कई बार कोशिश ये होती है एज अ डेंटल प्रोफेशनल, हमारी होती है कि उसको जितना ज्यादा फंक्शनल या फिर जितना जितना दिन तक हम उसको रख सके, ताकि वो अपना सारा काम, दांत जो है अपना सारा काम निभा सके. लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज्यादा है और बार बार भरने के बाद भी अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें और कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे. तो वो प्रेफरेबली यही होगा कि आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं जो ट्रेन्ड और स्पेशलिस्ट हों, और उनसे खास करके ये ये जांच करवाना बहुत जरूरी है कि इसके अलावा और क्या इलाज हो सकता है.
1: सर डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक सवाल सोनू ने भी पूछा है उत्तर प्रदेश से, इनकी उम्र है 35 साल, इन्होंने भी यही कहा कि खाना फंस जाता है लेकिन ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता, तो क्या ये जो गैप है ये अपने आप फिल हो जाते हैं या इसके लिए मतलब कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
3: देखिए सोनू जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे एज पर जो डेटा जो कहता है, जो आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में मसूड़ों की बीमारियां होती हैं. ये दांतों में जो गैप आना शुरू होता है ना, ये खास करके मसूड़ों की बीमारियां जो है ना, शुरुआती लक्षण वही होते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों से फिर उसकी हड्डी गलना और फिर दो दांतों के बीच में जगह बन जाना, तो उसकी वजह से वहां पर खाना फंसना शुरू हो जाता है. जब एक बार फंसना शुरू होता है, उसके बाद अगर नहीं निकलता, तरीका यह है कि डेंटल दंत चिकित्सक के पास जाएं, उसकी सफाई करवाएं. बट उसके अलावा जैसे आप वापस आते हो और रूटीन में आप रहते हो, तो कई बार फंसता है, तो आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हो, तो जरूरी यह है कि इस तरह के जो उपकरण हैं जैसे टूथपिक रेगुलर, बहुत ज्यादा
1: पिन की भी
3: इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल पेन कुछ भी डालते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें और अपना डेंटल चेकअप कराते रहें. उसके अलावा जरूरी यह है कि रेगुलर ब्रशिंग और मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन की.
1: जी, एक कॉलर लाइन पर है. हेलो.
4: नमस्कार जी.
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए.
4: सर को भी नमस्कार
3: जी. नमस्कार. नमस्कार
4: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी भी लगा जो.
1: जी पूछिए आपका सवाल.
4: सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि हम पानी नहीं खाते, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते, तब भी हमारे दांत पीछे से लाल क्यों रहते हैं?
3: जी लाल रहते हैं. कुछ और आप कुछ खाने पीने में कुछ और ऐसा कुछ करते हैं?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं लेते जी.
3: अच्छा ठीक है, फिर वही मेरा सुझाव यही रहेगा आपको कि असन जी आप ना एक आसपास के जो निकटतम डेंटल चिकित्सक हैं उनसे जरूर जांच कराएं। खाने के पदार्थ में भी हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी रंग होता है और उसकी वजह से भी हमारे दांतों पर रंग चढ़ सकता है। तो जरूरी यह है कि जानना कि अगर कोई कारणवश अगर है और सालों के बाद, जैसे आप अपना उम्र कह रहे हैं, सालों पे हम जितना साल हम खाना खाते हैं उसके ऊपर इस तरह के भी चेंजेस आते हैं। जैसे मैं कह रहा था समय उम्र के साथ जो चेंजेस पूरे शरीर में आते हैं दांतों में भी आते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एज रिलेटेड या फिर उम्र के साथ चेंजेस है या फिर इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है, तो चेकअप के बाद ही पता लगेगा।
1: जी, एक मैसेज आया है आलोका का, 52 इयर्स की हैं और कह रहे हैं कि ठंडा गर्म दांतों में लगता है, दांतों के ऊपर कुछ कैविटी से भी लगती है, इसके लिए प्लीज सजेस्ट करें कि क्या है।
3: आलोका जी, कई बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लगने के, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ शो पे, कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक कारण जो है दांतों में सड़न होना। तो दांतों में सड़न होने की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कैविटी हो गया, कैविटी होने की वजह से वहां खाना फंसना शुरू होता है और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहली बात यह, अगर आपको लगने लग गया है कि खाना फंस रहा है, कैविटी हो गया है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाके उसका इलाज कराइए। क्यों, अगर लेट करेंगे तो ये जो कैविटी है या जो सड़न की वजह से जो गड्ढा बन गया दांत में वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से दांत शायद पूरा टूट भी सकता है। तो इसलिए जरूरी है समय रहते हुए इसका इलाज कराना जरूरी है।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है हम तक, लिखने वाले हैं चैंप सिंह बरमार से। वो पूछ रहे हैं कि मेरे दांतों में मैंने मसाला भरा हुआ है लेकिन कैप नहीं लगाई है, इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? लेकिन साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि दांत का मतलब दाढ़ है और वो एक दांत दाढ़ सही हो गई है लेकिन दूसरे पास के दांत में दिक्कत हो गई है।
3: ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप वो कह रहे हैं मसाला भरवाया, सबसे पहले जानना जरूरी यह है कि उनमें नसों का इलाज हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दांतों के नसों का इलाज होता है और सफाई होकर सड़न जब फैल जाती है तो उसकी पूरी सफाई होती है और पूरा मसाला भरा जाता है। और जब ऐसे दांतों में जब हम लोग पूरे दांत को बचाते हैं, ये खास करके दांतों को बचाने के लिए किया जाता है कि दांत अपनी जगह पर रहे लेकिन उसमें कोई जान ना रहे, लेकिन वो सारे फंक्शंस वो कर सकें जो एक नॉर्मल दांत को करना है। लेकिन इस दांत में क्योंकि कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है तो ये दांत जो है इसमें पानी का प्रभाव भी कम, पानी मतलब वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ओवर द इयर्स और ये थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए मसाला भरने के बाद विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम विद इन 2 टू 3 इयर्स के अंदर आप वो कैप चलाना जरूरी है, अगर क्योंकि कैप नहीं चलाएंगे तो दांत का फ्रैक्चर होना या दांत का क्रैक होना बहुत संभव है। ये इवन 3 महीने 4 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय पे कैप नहीं लगाएंगे तो कैप क्या करता है, कैप जो है जितने होने वाले फोर्सेस जो है, जो दांत दो दांत ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं उसका जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन से वो उस दांत पे उतना असर नहीं पड़ता जितना पड़ सकता है।
1: जी, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स लगातार अपने क्वेश्चंस का आंसर सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं और ऐसे ही एक लिसनर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हेलो।
5: हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए और आपकी समस्या बताइए।
5: मेरी जगजीत सिंह नाम है, मेरे दांत नकली लगे हुए हैं।
1: ओके,
5: हाँ जी, इनसे पूछना है कि रात को लगा के सोएं या कुछ, अब दिक्कत करने लगे, 8 साल हो गए इनको लगे हुए, दांत बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, साफ सुथरे हैं, मगर खाने में अब दिक्कत

0: करने दीजिए, एक बार देखने दीजिए वहां पर कोई हड्डी का टुकड़ा तो नहीं है। अगर वो पूरी तरह से जांच कर लेंगे और अगर उनको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो फिर वो जो नकली दांत है उसमें भी अंदर से रीलाइनिंग जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज जो मैं कह रहा हूं ये जांच के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या तकलीफ, कारण क्या है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा।
1: जी, तो हमारे सभी लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन कॉल्स के जरिए भी। आज की हमारा जो विषय है वो है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो अब वक्त हो गया है एक डॉक्टर साहब की पसंद के गीत को सुनने का।

0: रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। डॉक्टर साहब, 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सबसे पहले ना वर्ल्ड हेल्थ जो विश्व स्वास्थ्य परिषद है, WHO जो है, वो पिछले 1987 से एक मुहिम के उद्देश्य से एक थीम निकालते हैं और इस थीम पे पूरे साल भर काम किया जाता है। जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जितने भी संस्थाएं तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करती हैं, उनके लिए एक उनको एक विषय मिलता है जिसपे वो लोग मिलके एकजुट होके इस तरह से काम करते हैं। खास करके देखिए, आज हमारे देश में करीब 3,500 से 4,000 लोग हर दिन तंबाकू के सेवन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकोप से उनका निधन हो रहा है, डेथ हो रहा है। और जब इतने लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टोबैको के यूजर्स हैं जो ये मर रहे हैं, और इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उनको नए उनको कस्टमर्स मिलने चाहिए, उनको और सेवन करने वाले लोग मिलने चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कैच देम यंग, तो प्रिंसिपल है कैच देम, जो बच्चे उनको एक्सपोज करते हैं, आए दिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, सैंपल्स, फ्री सैंपल्स बांट

0: स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, स्टेशनरी बिकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को रुझाने के लिए किया जाता है। और बच्चे जो हैं पीयर प्रेशर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और खास करके पीयर प्रेशर एक और चीज है, और साथ में रोल मॉडल्स हैं जिनको वो लोग काफी स्क्रीन्स पे देखते हैं, जिनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो सारे तरीके से एक एनवायरमेंट है। और खास अपने ही आसपास लोगों को देखते हैं कि वो लोग सिगरेट बीड़ी खैनी खा रहे हैं, उससे उनको इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इंडस्ट्री जो है खास करके किसी एक रूप में नहीं है, कई रूपों में बच्चों के इर्द गिर्द है जो हमें पता भी नहीं लगता कब इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए जरूरी यह है कि हम बच्चों को बचाए रखें और उनको समझाएं कि इस तरह की आदतों से आज नहीं पूरे जिंदगी भर दूर रहना है।
1: बिल्कुल रहना है। और लेकिन इस वक्त हम एक कॉल से दूर नहीं रह पा रहे, कॉल बहुत देर से हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं। तो हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं जितेंद्र दोसार से ग्राम मऊ तहसील खैर जिला हरिगढ़ यूपी वेस्ट से
1: आपका सवाल पूछिए।
2: तीन सवाल है। पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे तम्बाकू का सेवन करते हैं
0: जी,
2: आपने देखे होंगे कैंसर का रिजल्ट आते हैं
0: जी,
2: चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं
0: जी,
2: इस पे क्या कहना चाहेंगे
0: जी?
2: अब यूं तो बोलते हैं कि तम्बाकू एल्कोहल यूज नहीं करें, इन पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर यूज कहाँ से करेंगे
0: जी? बहुत बहुत नेक सोच है आपका और बहुत जरूरी सवाल भी है कि देखिए कैंसर तो होना जो है ना संभव तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, इन सब में ऑटोमेटिकली कैंसर होने की संभावना या बाकी शारीरिक बीमारियों को होने की संभावना हम कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर हम कैंसर होने वाला है तो इसको पाबंदी क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्योंकि ऐसा सवाल है जिसका शायद हम एक डायरेक्ट एक सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको जितना ज्यादा हम रोकेंगे उतना बेहतर होगा सभी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी।
1: जी बिल्कुल। और ऐसा ही डॉक्टर साहब एक और सवाल हम तक पहुंचा है, कहते हैं खाना खाते समय गाल का अंदरूनी भाग कभी कभी कट जाता है, क्या ये दांत या दाढ़ की वजह से होता है? और साथ साथ रात को गर्म या ठंडा पानी कौन सा पीना चाहिए कि दांत हमारे स्वस्थ रहें? लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से।
0: जी मनोहर जी थैंक यू, ये धन्यवाद आपके सवाल का। सबसे पहली बात, गाल के अंदर अगर बार बार दांतों के बीच में अगर गाल आ रहा है तो कई बार ऐसे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो बहुत नुकीले भी होते हैं, तो इन नुकीले दांतों की वजह से गाल पे इस तरह से कट या फिर छाला पड़ होने की संभावना या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले इसकी जांच कराएं। कई बार दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि उन जो दांत बहुत नुकीले हो गए हैं उनको थोड़ा सा उसकी इलाज करके उसको कम नुकीले बना देते हैं, उससे जो है असर पड़ना इस तरह का होने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था उनका?
1: उन्होंने यही पूछा था कि
0: मतलब पानी किस तरह का पानी रात को किस तरह से पीना चाहिए। जी जी जी, ऐसा देखिए कोई भी चीज एक्सट्रीम में ना करें तो बेहतर होगा। गुनगुना पानी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सट्रीम ठंडा पानी या एक्सट्रीम गर्म पानी ना ले, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है जो आम तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है उसका सेवन जरूर करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हुक्का पीना या ई सिगरेट या खासतौर पर यूथ में ये वेपिंग बहुत ही आम हो गया है, या अभी आम भी नहीं हुआ है, लोग समझ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत पॉपुलर है
0: जी।
1: तो क्या आपको लगता है कि लोगों के बारे मन में ये मिथ है या ये एक्चुअल में है कि इसमें तंबाकू नहीं होता?
0: जी देखिए, ये सब इंडस्ट्री के टैक्टिक्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पे कि जो वेपिंग जो आपने कहा, ये बेसिकली ई सिगरेट, इसको हम एंड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये जो निकोटीन डिलीवरी, निकोटीन क्यों? क्योंकि निकोटीन जो है ना, जो तंबाकू आज हम लोग जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर गुटखा खैनी खाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है, वैसे तो उसमें से 400 से अधिक ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, बट सबसे ज्यादा एडिक्टिव जो सब्सटेंस इन सब में है टोबैको में है वो है निकोटीन। वो इतना एडिक्टिव है कि वो आपका शरीर जो है, जो ब्रेन जो है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और पूरा जब तक वो नहीं होता तब तक उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे पहली बात इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने निकोटीन के नए नए तरीके डिलीवर करने के तरीके बनाए, जिसमें से वेपिंग एक चीज है।
1: तो आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि जो यूथ है हमारा, वो इस बात को समझे कि चाहे वो हुक्का पीना हो या फिर ई सिगरेट हो और या फिर वेप हो, ये कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है और आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट्स, वेपिंग, हुक्का, इन सब जो ई हुक्का है, इन सबको बैन कर रखा है 2019 से। और अगर हम ये मिल रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से मिल रहे हैं, अदरवाइज दीज हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द होल कंट्री।
1: और मुझे लगता है समय जो यूथ हमें सुन रहा है ना, वो बहुत ही इंस्पायर होगा हमारे डॉक्टर साहब की इस बात से, और साथ में उस गाने से जो अगला हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब की पसंद का।

0: एक लिसनर हमें याद कर रहे हैं, उनकी कॉल लग गई है, तो जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: और सवाल मेरा ये है सर कि मैंने अपनी लाइफ में गुटखे का सेवन किया हुआ है। अब जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने एडवाइस मुझे यो किया कि अगर आप गुटखा खाते हो तो एक तो ये माउथ फ्रेश औषधि होती है मेडिसिन, मुंह से बदबू कभी नहीं आएगी, दांतों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे, इससे तेजाब होता है, तो कभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। और साथ में माइंड फ्रेश औषधि भी होती है, अगर मैं इसको खाता था तो दिमाग से मेरे सिर दर्द जो होता है वो भी मतलब गायब हो जाया करता था, और अगर मैं कोई चीज पढ़ता था सुनता था तो एक ही बार में उसको कंठस्थ कर लेता था। पर फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, मेरे को ये छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिए। तो जब वे होते हैं और नेगेटिव है तो फिर इसको या तो मार्केट में अगर हम खाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर हर्ज है तो फिर थोड़ा सा इससे प्रकाश डाले। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम ये माउथ वॉश यूज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि हफ्ते में या 15 दिन में कितने मर्तबा।
0: जी राजेंद्र जी, बिल्कुल आपके दोनों ही सवाल बिल्कुल जायज हैं और डॉक्टर साहब आंसर दे रहे हैं।
2: जी थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। देखिए सबसे पहली चीज ये है, गुटखा जो है इंस्टेंट जो आपको लगता है, जो आपको लग रहा था, ये सब चीजें लग सकती हैं शुरुआती में, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर इसका आदि हो जाता है तो इसको उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो सबसे पहले ही जानना जरूरी है, देखिए गुटखे का सेवन आप जरूर करते हैं लेकिन आप उसका असर किस किस चीजों पर डाल रहे हैं। आप उसको थूकते होंगे तो उसकी वजह से थूकने से एक तो गंदगी भी होती है और दूसरा जो है यहां तक इन्फेक्शन भी फैल सकता है। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि इससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटीज थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़े दिनों की मेहमान है, इसके आगे नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज आपने पूछा माउथ वॉश के बारे में, तो माउथ वॉश के बारे में बता दूं कि माउथ वॉश रूटीन यूज में हमें डाइल्यूशन मतलब पानी मिला के ही करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें, डेंटिस्ट के परामर्श के हिसाब से ही माउथ वॉश इस्तेमाल करें, वो आपको बेहतर होगा और वो उनकी सुपरविजन में रहेगा तो आपका इलाज और उसका जो असर पड़ता है वो भी बेहतर होगा।
0: बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं जिन्होंने हमें कॉल्स भी की, व्हाट्सएप भी की, लेकिन डॉक्टर साहब एक वक्त बहुत थोड़ा बचा है हमारे पास, लेकिन एक सवाल कुल बुलाकर मेरे सामने आ रहा है। वो पूछ रहा है कि यदि तंबाकू हम छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम होती हैं?
2: जी जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज तंबाकू का सेवन जैसे हम समय लेके चढ़ता है शरीर में उसी तरह से निकलते वक्त भी वो अपना असर इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। तो इसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जब तंबाकू का सेवन जब आदमी कोई भी आदमी अगर छोड़ता है तो सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखती है। सबसे पहले जैसे क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब ये होता है उसके अंदर अर्ज मतलब उसके अंदर इच्छा होती है कि अब जब छोड़ दिया हाँ जरूरत है अभी इमीडिएटली मैं कुछ उठा के या तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं या गुटखा खा लूं, तो उसको वो अर्ज होती है। तो वो अर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको दवाइयों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो काफी सारी दवाइयां हैं जो डेंटल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं इन इस क्रेविंग को एड्रेस करने के। इसके अलावा बेचैनी होना, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आना ना, प्यास लगना बहुत ज्यादा, या फिर गले में कुछ फंसा हुआ लगना, तो इस तरह की जो जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये सब 3-4 हफ्ते रहती हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज जैसे काउंसलिंग आप ले ही रहे हैं, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी आदत है ये, तो आपके फैमिली के और दोस्तों की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा दवाइयों का सपोर्ट, और खास करके खुद समझें, आप जब तक इसको अपने आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे और ऐसे चीजों का जैसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हम आराम की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, अच्छे नींद मतलब स्लीप प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सही से सोना, 7-8 घंटे सोना और एक्सरसाइज करना, और बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, इन सब 4-5 चीजों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शरीर तो तंबाकू के सेवन से खराब होना ही है। तो आप ये लेकिन ये लेके चलिए कि एक डेंटल प्रोफेशनल, एक दंत चिकित्सक जो है आपकी मदद कर सकता है। आप उनसे अपने प्रॉब्लम जो तकलीफ है उसको शेयर करिए और वो सही तरीके से आपको गाइड करेंगे इस चीज से निजात पाने के लिए।
0: जी, तो आज का हमारा जो विषय था वो था ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी
0: जी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ रश्मि लेती है आपसे इजाजत रेडियो डॉक्टर से। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi यानि healthairdelhi@gmail.com पर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं और किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर सुनना चाहते हैं आप वो विषय भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्चा, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR खर्चा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हार है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम
तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम 1 मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांटकर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोच रखता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चे से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ सैम आपके साथ। और जैसा कि कहते हैं ना कि आपके साथ करनी है बहुत सारी बात। फिलहाल अभी प्रोग्राम है आपके लिए अल्फा जैन, और अल्फा जैन में आज हम क्विज, रेनबो क्विज लेकर आए हैं आपके लिए। और क्या कुछ है आज रेनबो क्विज में, वो बातें आपसे होंगी। खूबसूरत गानों का सिलसिला भी चलता रहेगा, आपके फोन्स का रहेगा बड़ी शिद्दत से इंतजार। और क्या कुछ है खास बताएंगे आपको, लेकिन ये प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान, मैं हूं सैम आपके साथ और यहां पर रेनबो क्विज। कौन बनेगा आज का विनर? बिल्कुल शिद्दत से इंतजार है आपके फोन्स का, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: पहले आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से और कौन?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: ओके उमेश, क्या करते हैं आप?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में एज कॉन्स्टेबल जॉब करता हूँ।
0: ओके, तो आप तैयार हैं क्विज के लिए?
1: जी कोशिश करता हूँ।
0: जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
1: 28 राज्य है।
0: और भारत में कितने जो केंद्र शासित राज्य हैं?
1: 8।
0: बिल्कुल ठीक, दोनों सवाल बिल्कुल ठीक। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे?
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: जी बिल्कुल सही जवाब आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
1: क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है।
0: बिल्कुल ठीक जवाब। और आज 31 मई है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा?
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
0: क्या बात है, आपने सारे सवाल बिल्कुल सही दिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे सभी सवालों के सही जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच।
1: एक क्वेश्चन अभी बाकी है ना मैडम, 4 ही हुए?
0: नहीं 5 हुए ना।
1: 4 ही हुए मेरे हिसाब से।
0: आपके हिसाब से 4 नहीं हुए, मेरे हिसाब से तो 5 हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे और कुछ पूछ लूं तो चलिए मुझे ये बता दीजिए कि 1 मार्च से 31 मई तक कौन सी ऋतु मनाई जाती है, कौन सी ऋतु कही जाती है?
1: वर्षा ऋतु, सॉरी वो बसंत ऋतु।
0: जी वसंत ऋतु जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। अभी भी आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के सही जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ बताना और जो हमारे सवालों के सही जवाब मिलते हैं तो वाकई में खुशी होती है। लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है। और जब विनर्स बनते हैं ना तो वाकई में मजा आ जाता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और यहाँ चल रहा है अभी क्विज टाइम। और हमारे साथ देखते हैं कौन से हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हेलो
1: हेलो,
0: आप कौन?
1: हेलो
0: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी जी मैम।
0: आप कौन, अपना नाम बताएं।
1: यज्ञ।
0: यज्ञ, आपकी एज क्या है?
1: 16 years old.
0: 16 years, ओके। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से हैं?
1: सुहाना मोहाली पंजाब से।
0: ओके, आप पंजाब से हैं। तो यज्ञ, आप तैयार हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए?
1: जी मैम, कोशिश करेंगे।
0: चलिए, अच्छा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है?
1: इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है मैम।
0: वेरी गुड। अच्छा, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं?
1: अशोक चक्र में
0: जी
1: मैम, जी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, और दूसरे चौथा भी मतलब की कॉल पे होंगे, नहीं आता मैम।
0: कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, आपने हमें कॉल किया और हमें अच्छा लगा आपने ट्राई किया फिलहाल, क्योंकि आप बहुत प्यारे से लगे, मुझे बहुत क्यूट से लगे, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की। और चलिए एक सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे, मिकी माउस के डॉग का क्या नाम है?
1: प्लूटो।
0: क्या बात है, प्लूटो। देखिए यक, आपने हमारे जो सवाल है ना उनका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की, और आप इतने प्यारे से है ना, सीरियसली तो वैसे ही आप जीनियस हैं, इसमें नो।
1: जी मैम, कभी कभी आंखों के अलावा बुद्धि काम आती है।
0: आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं।
1: क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं ना मैम।
0: हाँ,
1: क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं ना मैम।
0: ओके ओके, बट जी
1: पर लोग कहते हैं कि मैं बातें अच्छी करता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया।
0: नहीं, वाकई आप बहुत प्यारी बातें करते हैं, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। और देखिए यज्ञ, जब इंसान कोशिश करता है ना तो वो वैसे ही जीनियस होता है, तभी तो कोशिश करता है ना।
1: हाँ जी मैम, इसलिए तो ये रेनबो जीनियस है।
0: जी, इसीलिए ये रेनबो जीनियस है, और वाकई आप जीनियस हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।
0: और आपके लिए एक प्यारा सा साउंड ट्रैक। ओके यज्ञ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।

0: सीरियसली कुछ कुछ लोग ना जिंदगी में वाकई कमाल होते हैं, बात करके मजा आ जाता है। और अभी कुछ देर पहले हमने यज्ञ से बात करी, बहुत अच्छा लगा यज्ञ आपसे बात करके। फिलहाल अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। हेलो,
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, दीपंकर बोल रहे हैं कटिहार से मैडम
0: जी। क्या आप हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं?
1: कोशिश करेंगे मैडम।
0: अच्छा, पहला सवाल बिना देरी करे आपसे मेरा ये है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य से निकलता है?
1: अरुणाचल प्रदेश से।
0: बिल्कुल सही। दूसरा मेरा सवाल आपसे है, आंवले

0: जी अगला सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है?
1: NH44 है मैडम
0: जी बिल्कुल सही। ये कहाँ से कहाँ तक है?
1: ये कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी तक है मैडम।
0: कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है?
1: ये जो है चंडीगढ़ से या दिल्ली से स्टार्टिंग होता है
0: जी, ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी,
1: श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। जी मैडम
0: जी, फिलहाल आपने हमें जवाब दिए, कोशिश करी, हमारे साथ जुड़े और हमारे क्विज में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
0: बाय बाय।

0: एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर है सैम आपके साथ और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना एल्फा चैन और हमारे साथ यहाँ पर आज क्विज के जो सही जवाब देने के लिए तैयार हैं कौन कौन है ये तो हमारे लिसनर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी अगले लिसनर की बात करें तो चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी कौन आपका नाम बताएं।
1: गुड इवनिंग मैम। मैं जिया
0: जी गुड
1: दिल्ली
0: इवनिंग। क्या
1: से।
0: करती हैं।
1: मैम अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
0: ग्रेजुएशन कर रही हैं।
1: यस
0: ओके कहाँ से हैं आप।
1: दिल्ली से।
0: दिल्ली से। ओके बिना देर किए चलिए आपसे जो मेरे सवाल है ना वो पूछ लेते हैं। ठीक
1: यस मैम।
0: है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
1: गंगा नदी।
0: वेरी गुड। दूसरा हमारा जो सवाल रहेगा वो ये कि IIFA का फुल फॉर्म क्या है।
1: मैम सॉरी थोड़ी आवाज हमारी है।
0: आई
1: आई
0: आई एफ ए का फुल फॉर्म क्या है। आईफा का फुल फॉर्म क्या है।
1: मैम नहीं पता।
0: कोई बात नहीं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स।
1: ओके मैम।
0: अगला मेरा सवाल आपसे है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा।
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: बिल्कुल सही जवाब। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े आपने हमसे बात की और हमारे इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच मैम। मुझे भी
0: थैंक
1: अच्छा
0: यू
1: लगा। थैंक
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
1: यू मैम।
0: बाय बाय टेक केयर। आपके जो सवाल जो मेरे सवाल हैं उसके जो जवाब आप हमें दे रहे हैं ना वो वाकई में कहते हैं ना इस प्रोग्राम को करने में मजा बहुत आता है। आपके प्यारे प्यारे से जब आप बातें करते हैं ना और जो सवालों के जवाब आप देते हैं सीरियसली और जब कोई विनर बनता है ना तो कहना ही क्या उस वक्त में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी प्रोग्राम का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान, मैं हुसैम आपके साथ। और वक्त की कमी भी है हमारे पास, कोशिश यही है कि जितने भी कॉल्स हम ले सकें और हमारी क्विज में जो दोस्त हैं वो शामिल हो सकें। फिलहाल बिना देरी करे देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहां से हैं। हेलो
1: हेलो, मैं गुड आफ्टरनून
0: जी।
1: पहले मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा से।
0: जी जी केशव, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो थोड़ा ट्यूशन कर रहा है, आई एम ए प्राइवेट ट्यूटर।
0: ओके, तो आई होप आप ट्यूशन लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो काफी सारी शायद सही जवाब हमें मिल जाए। फिलहाल बिना देरी करे आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा पैदावार जो उत्पाद है वो कौन से प्रदेश में होता है?
1: सबसे ऊंची बात
0: जी
1: मैडम।
0: जी जी जी
1: ये तो भाकरा नंगल बात पंजाब से।
0: मैं आपसे एक बार फिर सवाल पूछ रहा
1: हूं। सबसे लॉन्गेस्ट तो डैम है या हीराकुद बात इन उड़ीसा में।
0: मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मेरा सवाल ये है आपसे कि भारत में जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने, मीठे गन्ने, उनका सबसे ज्यादा पैदावार यानी कि उनकी सबसे ज्यादा उत्पाद कौन से प्रदेश में की जाती है?
1: ये जमशेदपुर झारखंड।
0: नहीं, ये जो पैदावार है ये यूपी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है गन्ने की।
1: ठीक है मैडम, थैंक यू
0: जी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि फिल्म सितारे जमीन पर में किस एक्टर ने मेल लीड रोल प्ले किया था?
1: ओह मैडम, इट इज आउट ऑफ माय नॉलेज, दिस आई सो वेरी फ्यू थिंग्स। ओके,
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, किसी चीज का जवाब देने के लिए, तब तक कैसे पता चलेगा। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।
2: You already know, baby. सोनू टुकराल।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल डाउनलोड वेब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
2: इन ताम्र पट्टिका

0: परीक्षाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत में भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰ ফিৰোজী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने

कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ইমানপুৰী শ্ৰোতাসকলে ভাৰ্গৱ কলিতাই যুগুতাই অনা গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটি শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক সংস্কৃতত বাতৰি, ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রুয়ন্তাম প্রবাচক ললিত মোহন তিওয়ারি। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবদত যত ভারত শাসনং রাষ্ট্রস্য অমূল্য রিক্তানাম সংরক্ষণার্থম নিরন্তরম প্রয়ততে। সদ্য এব নিদারল্যান্ড দেশস্য যাত্রাবধৌ চোলকালীন তাম্রপট্টিকানাম ভারতায় প্রত্যর্পণমপি প্রধানমন্ত্রিণা উল্লেখিতম্। আকাশবাণ্যাঃ মন কি বাত কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী আতপাত আত্মানাম সংরক্ষিতুম পারম্পরিক পেয় পদার্থানাম সেবনায় জনান অধ্যর্থয়ত। CBSE इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्तमात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद्रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम, पानकम, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहितः अस्ति।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री रांची नगरी आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिंदर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेंस अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमण्यः अवदत् यत् सशस्त्र बलानि राष्ट्रहित संरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालन सम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्रांगणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रिय युद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ইমানপুৰ শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। আমি ষ্টুডিঅ'লৈ পুনৰ উভতি আহিম 9:30 ৰামধেনু অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে সর ফিরোজি। মুখ্য সমাচার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে আকাশবাণী সে মন কি বাত কার্যক্রম মে প্রকৃতি সংরক্ষণ, স্থানীয় সমস্যাও কে সমাধান ও অন্য সামাজিক কার্যো মে লোগো কে প্রয়াসো কি সরাহনা কি। প্রধানমন্ত্রী নে রাষ্ট্রীয় খেল আয়োজনো মে উভরতে খিলাড়িও কে অচ্ছে প্রদর্শন কি ভি প্রশংসা কি। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নে 12ভি কক্ষা কি উত্তর পুস্তিকাও কে মূল্যাঙ্কন কে লিয়ে অন মার্ক পোর্টাল কি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করনে কে লিয়ে সাইবার সুরক্ষা বিশেষজ্ঞো কি টিম তৈনাত কি। হিমাচল প্রদেশ নগর নিকায় চুনাব মে ভাজপা নে 4 মে সে 3 নগর নিগমো মে জিত হাসিল কি। মিয়ামা মে এক ইমারত মে হুয়ে বিস্ফোট মে 45 সে অধিক লোগো কি মৌত। ভারত কে সাত্বিক সাইরাজ রঙ্কি রেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি নে সিঙ্গাপুর ওপন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট কা পুরুষ যুগল খিতাব জিতা আর আইপিএল ক্রিকেট মে গুজরাত টাইটন্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কে বীচ ফাইনাল মুকাবলা জারি। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली

0: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन

0: আকাশবাণী গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পিছতে ছানডে নাইট কনচাৰ্ট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु यर्रय्या एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु यर्रय्या इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री जी वेंकटरमणा। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर श्री कल्लूरी मल्लय्या and earned recognition as an A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: Aaj ke karyakram mein Shri Asnapuram Yeraiya evam Mandali ke saath Dolu par Shri V.N. Balchandar Sangati denge. Shri V.N. Balchandar Andhra Pradesh ke prasiddh Dolu vadak hain. उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
2: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुर यर्रय्या एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण and Tiruchirai T.V. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashvani.
1: Shri Yeraiya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. Ye rachna T. Singaracharya ki hai jo raag Vasant aur Adi Taal mein nibaddh hai.
2: Shri Yeraiya begins his saxophone recital with Ninnu Kori Yunannura, a composition of T. Singaracharya in raag Vasanta set to Adi Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निम्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विथ नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री अस्नापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल बी लिसनिंग टू निन्नु जेप्पा कारणमेनी, ए कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्यम अय्यर इन राग मंदारी, सेट टू आदिताल।

0: प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री अफनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम यरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंद्रन ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम यरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंद्रन। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।